0: बाद गल्ला करे कनेरियां कसना पाए साथ आप गुआ सेवा करे ता कुछ पाए बात नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान
1: जो जी होए सो गवै मोका कया वाओ जो जीए होए सो गवै मोका कया वाओ बिजे बेख मंगे अमृत वेखो एओ न्या महला दूजा नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कई बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक।

0: चले अरदास चले अरदास चले अरदास
1: पौड़ी चाकर लगे चाकरी दे चले खसमे पाए हुरमत तुसनो बलियो वजो पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर करे तंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाणा खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिए साबास नान खुकमना चले।

873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स और डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। लो हुण हिंदी विच समाचार सुनो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल

0: फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरे वेब 370.6 मीटर 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं ज्ञान अमृत।

0: हुण तुसीं सरवण कर रहे सी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना मीडिया वेब 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश है खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

श्याम बेनेगल दी फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा अते लिटल बुड्ढा ओ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन नाल भी जुड़े रहे। एक सिरजनहार वजो भीषम सानी ने अपनियां रचनावां अते कला राही हमेशा समाजिक बुराइयां सांझीवालता अते मनुखी संदेवना नूं परदे ते पेश कीता। साहित अते कला विच उहनां दे योगदान लई उहनां नूं साहित अकैडमी पुरस्कार नाल अते पद्म भूषण नाल सन्मानित भी कीता गया। इसे तरह असी अज एक होर शख्सियत मशहूर अदाकारा अते गायिका टुनटुन भाव की उमा देवी खत्री नूं भी याद कर रहे हैं। गीत अफसाना लिख रही हूँ उन्हां ते फिल्माया होया बड़ा ही मशहूर गीत है। 11 जुलाई 1923 नूं उत्तर प्रदेश विच उन्हां दा जन्म होया सी ते हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन सी। 24 दिसंबर 2003 नूं मुंबई विच उन्हां दी मौत हो गई सी। इस तरह एक स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री अते एक उग्गे सिख आगू सरदार बलदेव सिंह उन्हां दा भी अज 11 जुलाई 1902 नूं रोपड़ पंजाब दे विखे जन्म होया सी। देश की वंड अते आज़ादी वेले उन्होंने भारतीय फौज की अगवाई दे विच अहम भूमिका निभाई सी। राम प्रसाद मिसमिल एक प्रसिद्ध भारतीय इनकलाबी जिन्होंने भारतीय आज़ादी अंदोलन विच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हां नूं इतिहासक काकोरी रेल डकैती विच शामिल होण अते हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन के संस्थापक मैंबर वजो याद किया जाता है। अज दे दिन उन्हां दा भी जन्म होया सी। ते इस तरह अज दा दिन बहुत खास भी है। अज दा दिन असी पूरे दुनिया भर के विश्व आबादी दिवस के नाम के नाल जानते हाँ। ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों खास है, ये सब दे नाल गलबात असी तुहाडे नाल करांगे। भी प्रोग्राम है सोनी सवेर, तो इस सोनी सवेर नू खूबसूरत बनाउंदे ने जिथे गल्लां जानकारियां उत्थे गीत भी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है

0: आईलैंड, टेरिटरी है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमी

0: फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गणमन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup,

0: शिकायत दर्ज करवाओ।
1: कार तो काम करो, वादू तनखा, बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
2: फसी।
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है,
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेज़,

0: एक गिले गले मिलना, एक सच्चा शब्द चाहे एक छोटी जी कोशिश वह कर देंदी है जो लंबिया दलीलां भी नहीं कर सकदियां।
1: बना लेंगे।

0: जब फूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
1: जी दोस्तों, अज के रुझेवे भरे जीवन के लोगों के कोल समा तो है, पर एक दूजे के लिए सबर तो समझ घट रही है। जे असी रिश्तिया सांभना चाहते हाँ तो रुसन नालों मना की आदत सानू सारू अपने विच पैदा करनी पवेगी, क्योंकि जित हमेशा बहस की नहीं सगो रिश्ते बचाने की होनी चाहिए है।

0: स्पेस सेंसस किया जा रहा है। ओवरऑल पर्पज़ उही है कि सरकार को पूरी जनसंख्या जो लोग साडे देश रहिंदे है उन्होंने बारे पूरी तरह पता हो ताकि असी उहदे मुताबिक नीतियां बना सकीए।
1: प्रोफेसर राजन जी, मैं थोड़े तो यह जानना चाहवागा, आम लोगों के मन में कई तरह के शंके होंगे ने जो उन्होंने डेटा लिया जाता है, तो आम लोगों को यह किवें समझाया जाए कि जो सेंसस का डेटा हैगा है ये बहुत जरूरी है उन्होंने देना, आप किवें उन्होंने आप जानकारी दे सकते हैं?
2: ये जिहड़ा सेंसस हो रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ी करा रही है, जिहड़ी कि सेंसस एक्ट जिहड़ा 1948 जिहदे तहत ये 48 विच जिहड़े होम मिनिस्टर सी पटेल उन्होंने ये संबंध में बिल पेश किया सी, और उस तो बाद फिर असी 1951 विच जिहड़ा पहला कंसेंसस जिहड़ा सी किया गया। इहदा उद्देश जिस तरह के मेरे प्रोफेसर ने भी दस्या, साथियों ने भी दस्या कि इहदा उद्देश है कि समाजिक विकास वेलफेयर स्टेट, क्योंकि हर तुसीं पंजाब च देख लो पंजाब का कुछ इलाका जिहड़ा है वह कुछ पक्ष तो अगे है तो कुछ इलाका जिहड़ा है वह बैकवर्ड है, जां उत्थे रेल रोड जां उत्थे एजुकेशन ये जिहड़ी कमी पेशी है किसी भी इलाके दे विच घट वध वह सावा विकास होवे, पूरे देश का पूरे इलाके का पूरे राज का सावा विकास होवे, कोई उहदे विच कमी पेशी किते भी ना रहे, और खास करके एजुकेशन और हेल्थ जिहड़ियां कि बेसिक फैसिलिटी है। एक्चुअली तुसी देखो इस वेले पैरेलल जिहड़ा SIR भी चल रहा है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जिहड़ी वह भी चल रही है, लोग थोड़ा कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि भई ये जिहड़ा सेंसस हो रहा है किस परपज वास्ते हो रहा है। असल विच ये जो कुछ हो रहा है ये लोगों के विकास वास्ते होया, क्योंकि जदों सानू किसी चीज़ की कमी पेशी का पता लगेगा तो उस हिसाब न सरकार जी प्लैनिंग करेगी और उस हिसाब न लोगों का सर्वपक्षी विकास जोड़ा वो किया जाएगा। लोगों किसी तरह न डरन की लड़ नहीं है, असी एक विकसित भारत वल जा रहे हैं, जोड़ा कि साड़ा उद्देश है 2047 तक असं विकसित भारत में जाना चाहते हैं। उदे वास्ते लोग जेडे है सब तो वड्डा, मैं समझदा सब तो वड्डा जेड़ा साधन जे किसे देश कोल आ वो ह्यूमन रिसोर्सिज ही है, क्योंकि एक पढ़िया लिखिया चंगा जेड़ा व्यक्ति है उदे तो ही चंगा साइंटिस्ट बनना, उदे तो ही चंगा इंजीनियर बनना, उदे तो ही चंगा डॉक्टर बनना, तो इस करके इस सर्वपक्षी विकास नूं ध्यान में रख दे, क्योंकि वड्डा देश है साधना की वंड सही तरीके राही करनी है, और साधन कई बार कमी भी होंदी है, फिर असी अपनी प्रायोरिटी फिक्स करते हैं भी आ चीज़ एजुकेशन बहुत जरूरी है इनू पहले ध्यान रखा जाए, जां आर्थिक जिहड़ा पक्ष है ये बड़ा जरूरी है इनू, मतलब प्रायोरिटीज़ असी फिक्स करते हैं अपनियां जिहड़ियां है तां कि साडे जिहड़े सीमित साधन है वो असी लोगों की भलाई वास्ते वध तो वध, वैसे भी तुसी देखो पापूलेशन वध रही है उहदे नाल फिर जिहड़ी प्रसीमन जिहनूं असी डिलिमिटेशन कहिंदे आ वी कॉन्स्टिचुएंसी जिहड़ियां निर्वाचन खेत्र जिहड़े वध रहे ने उहदे हिसाब नाल लोक सभा राज्य सभा दीआं सीटां भी वधणियां, सारे लोगों को प्रॉपर प्रतिनिधता भी देनी है, उन्हां दी आवाज़ भी जिहड़ी है वह हर उच्चे मंच ते पार्लीमेंट विच जानी चाहिए है। सो ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां है, वैसे भी इहदे नाल सानू ये पता लग जांदा है कि जनसंख्या की जिहड़ी प्रवृत्ति है उन्हां दी सोचण उन्हां दी ट्रेंड्स जिहड़े आ उन्हां दी सोच बारे खाण पीण बारे उन्हां दे पहरावे बारे वह लोग की सोचते हैं वो उन्हां दा माइंड सैट जिहड़ा तां कि उहदे मुताबिक असीं अपनियां नीतियां जिहड़ियां सरकार जिहड़ी है उन्हां दे मुताबिक, क्योंकि लोगों की सरकार है ना तो लोगों के मुताबिक ही नीतियां बननी है तो लोगों का विकास जिहड़ा वो सर्वपक्षी है।
1: डॉक्टर साहब तुसीं बखूबी जानना पाया है कि जनगणना जिवें कि नाम तो ही क्लीयर है कि जन दे अंकड़े ने इहदे विच इकट्ठा किए जाते मनुखी स्रोतों नूं इहदे विच सूचीबद्ध किया जाता है। प्रोफेसर परमिंदर सिंह भोगल जी, हुण मैं तुहाडे वल आवांगा, मैं तुहाडे तों इह पुछणा चाहांगा जे साडे देश दे समुच्चे समाजिक अते आर्थिक विकास के हवाले के नाल जिमें कि प्रोफेसर साहब ने भी दस्या सानू जे समुचे देश नूं देखा जाए सेंसस जिमें हुण 15 साल बाद हुण साडे देश विच हो रही है पहले 10 साल बाद हुंदी सी, इह जिहड़ा टाइम गैप हुंदा है बखवा हुंदा है जिमें उह किस तरीके दे नाल जिहड़ी सेंसस हैगी आ जां आउण वालियां जिहड़ा टाइम हैगा उह किस तरीके दे नाल सेंसस जिहड़ी हैगी आ उहनूं देखदी है? जिमें
0: सेंसस जदों 10 साल दे वक्फे बाद कीता जांदा इस सोच के कि एक दहाके दा जिहड़ा डाटा साडे कोल आया वो आन वाले, क्योंकि पॉलिसी प्लैनिंग है फिर पॉलिसीज़ की इंप्लीमेंटेशन है फिर उसके जोड़े इफेक्ट है सोसाइटी पर किस तरह के रहेंगे की फीडबैक आ रही है वो 10 साल का समा काफ़ी पर्याप्त हैगा एप्रोप्रिएट हैगा, और फिर इस करके ही तकरीबन इन्ना टाइम गैप जो सारी दुनिया के सेंसस होंगे इट्स अ ग्लोबल एक्सरसाइज सारे देशों के तकरीबन होंगे अनलैस किसी देश बहुत

0: कोई समस्या हो, जिस तरह अफगानिस्तान च नहीं हो पाया सी, इस पाकिस्तान च भी पिछली बारी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, लेकिन अदरवाइज सारे दुनिया के देश जोड़े है इस करते हैं। उदा जिस तरह बार बार डॉक्टर शर्मा ने भी दसिया, आप गल कर रहे हैं कि परपज यही है कि साढ़े को क्लीयर स्थिति, एक क्लीयर पिक्चर, एक स्पष्ट स्थिति होवे कि असी किस तरह की जनसंख्या की नू केटर करना, किस तरह की जनसंख्या दे विच किस तरह के इशूज़ ने, किस तरह दियाँ डायवर्सीफिकेशनज ने, किस तरह दियाँ थानू जिहड़ियां डिफरेंट लैवल दियाँ जिहड़ियां डिफरेंट टाइप्स दियाँ अप्रोचेस चाहीदियाँ, क्योंकि जो जिहड़े वड्डे देश है खास तौर पर जिस तरह साडा देश है उहदे विच इन्नी ज़्यादा डायवर्सिटी है, कल्चरल डायवर्सिटी है, लिंगुइस्टिक डायवर्सिटी है और सोशो इकनोमिक डायवर्सिटी है, उत्थे कोई भी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बन सकती। जे आपां कहीए दिल्ली तो बैठ के एक तरह की पॉलिसी सारे देश लगा दी जाए वो कामयाब नहीं होएगी, उहदियां प्रॉब्लम्स आनगियां। इस करके जरूरी है कि साडे कोल एक पिक्चर होवे कि साडे किहड़े किहड़े इलाके च किस तरह के लोग वसदे है, उहनां दे किस तरह दियां महत्वाकांक्षावां हैगियां, किस तरह दियां उहनां दियां समस्यावां हैगियां। इस करके इन्ना डिटेल्ड इनफॉर्मेशन जदों जिहड़ी सैकेंडरी फेज, जिहड़ा सैकेंड फेज आएगा, जदों वो जिहड़े ऑफिसर्स ने जां जिहड़े एनुमरेटर्स ने लोगों के घरों करी जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने कोल काफ़ी ज़्यादा वो तकरीबन 40 हैड्स ऑफ इनफॉर्मेशन ने जिहड़े वो इकट्ठे करनगे। उहदा परपज़ यह हैगा कि सरकार कोल जिहड़ी साडी पॉलिसी प्लैनिंग बोर्ड, जिस तरह नीति आयोग है जिहड़ा पहला योजना आयोग हुंदा सी, उसदे कोल पूरा डाटा होवे और उस हिसाब नाल जिहड़ी है असीं अपने फैडरल स्ट्रक्चर दे विच पॉलिसी नूं जिहड़ा है फैडरेट करिए, डिफरेंट इलाकियां दी लोड़ दे हिसाब नाल, लोकां दी लोड़ दे हिसाब नाल उस पॉलिसी नूं बनाइए। इस करके ये जिहड़ा 10 साल दा समय दा जिहड़ा गैप दित्ता गया, मैं समझदा कि ये काफ़ी एप्रोप्रिएट है। हाँ, यह हो सकता है कि जिस तरह इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स वध रही हैं, इलैक्ट्रॉनिक रीच वध रही है, हो सकता आने वाले टाइम से सरूप बदल जाए, नाल दी नाल सिटीजन रजिस्ट्रेशन होंदी रहे, जिस तरह लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग सरकार नूं जिहड़ा है नाल दी नाल अपडेट हुंदा रहे, तो हो सकता फिर इहदा जिहड़ा 10 साल वाला जिहड़ा रूप है वह बदल जाए, पर फिलहाल इसे नूं ही सारी दुनिया दे विच चलाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर राजन जी, जिवें मैं तुहाडे तों कुछ इहदी प्रक्रिया बारे जानना चाहवांगा, जिवें काफ़ी इह कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसैस है पूरी सेंसस दा, साडा देश भी बहुत वड्डा जिवें कि तुसीं दस्सिया हैगा, जिवें डाटा इकट्ठा करन तों लै के उस तों बाद उहदी कोडिंग, फिर उहदा अनालिसिस करना, इह काफ़ी इक लंबी प्रक्रिया हैगी है, तुसीं इस बारे कुछ अपने विचार दसना चाहोगे?
2: जी देखो जी, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया है कि इहदे विच दो फेज़ होणगे। पहला चरण जिहड़ा होएगा उहदे विच, जिहड़ा 1 अप्रैल तों शुरू हो गया है, उहदे विच हाउस जिहड़े घर है, भवन जिहड़ा है, उहदी लिस्टिंग होएगी, उहदे बारे जिहड़ा है सेंसस होएगा, गणना होएगी, घर दी जिहड़ी स्थिति भी घर कच्चा है पक्का है, उत्थे किहड़ी किहड़ी सहूलतां ने, किहड़ी किहड़ी उत्थे प्रॉपर्टी है, मतलब फ्लोरिंग किहो जी है, जिहड़ियां दीवारां किहो जीआं है, किहड़ी समग्री दा, मतलब 33 क्वेश्चन जिहड़े है उह पुछे जाणगे। फिर टीवी है, लैपटॉप है, कार है, पानी दी की व्यवस्था है, कित्थों आ रहा, निकास की है, फिर हारवेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, फिर कच्चा पक्के तो अलावा ये भी व्यवस्था हैगी है कि जिहड़ा मकान अगर बहुत ज़्यादा पुराना है वो तुसीं मालक हो, तुसीं किराए ते रह रहे हो, टॉयलेट है कि नहीं है, सोलर एनर्जी का प्रबंध है, पानी, LPG, इंटरनेट, ये सारा, ईवन जे कोई लिव इन रिलेशन च रह रहा ते जे वो अपने आप नूं मैरिड भी डिकलेयर करना चाहुंदा ते उहदे विच वो कह सकदा, मतलब वैसे इनफॉर्मेशन जिहड़ी है हैड ऑफ द फैमिली जिहड़ा है, जदों जे सैल्फ एनुमरेशन भी करनी है ते हैड ऑफ द फैमिली जिहड़ा है उहदे नां ते पहले रजिस्टर हो जाणा और बाद विच वो सारा जिहड़ा प्रोसैस है ना वो वेरीफाई होना, मतलब इस करके कास्ट दा फैक्टर भी है, वी कास्ट भी पुछी जाएगी भी तुसीं जनरल कैटेगरी किहड़ी कैटेगरी नाल, मतलब बड़ी डिटेल जिहड़ी है जिहड़ी कि आम बंदे नूं समझ नहीं आउंदी कि भाई ये कादे वास्ते पुछ रहे हैं, जबकि ये लोगों दियां जिहड़ियां कमियां पेशियां, थोड़ा डर भी है कईयां नूं, वैसे कई ये भी कह रहे हैं भी कुछ सावधानियां भी सानूं लैणियां पैणगियां कि जिस तरह कोई तुहानूं पुछे भी तुहाडा आधार बारे तुसीं कोई जानकारी नहीं देनी, ना कोई तुसीं उहनां नूं पैसा देना है, ना तुसीं उहनां नूं बैंक अकाउंट दसना, ना उहनां नूं तुसीं OTP, क्योंकि ये बहुत वड्डी एक्सरसाइज है, लोगों के मन थोड़ा डर भी हुंदा जिहड़ा पढ़िया लिखा नहीं है भी इहदा परपज की है, इस करके ये बड़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिहदे विच लोगों का सोशो इकनोमिक समाजिक आर्थिक उहनां दा पद्धर की है, क्योंकि सिद्धांत तां ही होना जे सानूं पता लग जाए कि भई लोगों का बस साफ पानी पी रहे कि नहीं है, स्वच्छ भारत वाला विच फैक्टर भी आ जाना, सो ये बड़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज है, इहदे विच डरन वाली कोई गल नहीं, सारा डेटा जिहड़ा सीक्रेट रखा जाएगा, इहदा डेटा किसी कोर्ट नूं किसी अधिकारी नूं

0: जी दोस्तों, मुस्कुराहटा वंडन वाले कदे भी खाली नहीं रहिंदे। रब उन्हां दी झोली कदे ना कदे किते ना किते जां फिर हमेशा ही खुशियां दे नाल भर दिंदा है। ते साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच हुण खुश होण दे लई आखरी कॉलर आए ने अपनी फरमाइश दे नाल। देखते हैं कौन आए ने। हैलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी, गुड मॉर्निंग जी।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम बिट्टू बोल रही, दूरदर्शन की बैक साइड मंगू सी जंदे मॉर्निंग जी।
0: जी बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं थोड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: थैंक यू जी, प्रोग्राम बहुत बढ़िया पेश किया तुसी जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुहाडे वल मी पै रिया?
1: हां जी हां जी, पै रिया, कणियां सी मरियां मरियां।
0: किनमें लगी हुई है? पर बरसात दी झड़ी भी देखो अजीब हुंदी है ना, एक गली च पै रिया ते दूजी गली च पैंदा ही नहीं है।
1: हां जी हां जी, अदे हुंदा जी,
0: है ना, बन्ना टप मी जिहड़ा पैना शुरू हो जांदा बरसात विच।
1: नमस्कार मैडम जी, गुड मॉर्निंग जी।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम बिट्टू बोल रही, दूरदर्शन दी बैक साइड मंगू सी जंदे वाले जी।
0: जी बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं थोड़ा प्रोग्राम दे विच।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।

0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स, FM 103.6 मेगा हर्ट्स, अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते ने, ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। स्टूडियो की कड़ी मुताबक इस वेले 11:05 ते 40 सैकेंड हो जा रहे ने। वेला हो गया प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती दा। फिर शनिवार दा दिन धमकां पान पहुंच गए हैं। कौन पहुंचे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪਾਲੀ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧਮਕਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਮਕਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

0: तेरा सरुजे हवर
1: हस के ना नाल साडे कदे बोलिया
0: सच्चे रब कोलों डर
1: डुब जे बचोला जी ने घर टोलिया
0: तेरा सरुजे हवर
1: हस के ना नाल साडे कदे बोलिया

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को

0: महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ।

जी अगला गीत चित्रा सिंह होना दी आवाज़ दे विच अपने श्रोतिया दी नज़र कर रहे हैं, जिस दी फरमाइश सानू भेजी है जी मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, पिंड मौला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मौला, दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाना होना ने। मलोट तो इस गीत में सुनना चाहते ने जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल, सुखबीर सिंह ते उन्हां दे बहुत सारे साथी, ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू।

0: जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया।
1: जी आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां एह गीत।

0: जी प्रोग्राम चल रहा जी झांजरा दे बोर, ते झांजरा दे बोर दी आखरी पेशकश ते उन्हां दी फरमाइश लै के असी हाजिर हाँ। प्रोग्राम दे विच इक खत आया पंचकूला सैक्टर 9 तो, इन्हां ने लिखा, मुस्कुराहट भी एक खुशी है, लीजिए और दीजिए, कुछ भी कम नहीं होगा। और
1: जी
0: बहुत ही वड्डी गल है कि अगर असी खुश रहने और दूसरों भी खुशियां वंडदे हाँ तो सारियां दा ही दिन जिहड़ा बहुत वधिया निकलता है। तो इन्हां ने लिखण वाले ने आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान ते लव दीवान, राधे भाविक ते डींगरा।
1: जी ऐसे गीत ने सुनना चाहते हैं जी, बठिंडा रोड डाबवाली तो रजिंदर नारंग, अंजू नारंग ते मोहित नारंग, खुरजा उत्तर प्रदेश तो फरमाइश भेज रहे हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा, पिंड चतरा जिला तहसील जिला फिरोजपुर तो फरमाइश भेज रहे हैं। जगजीत सिंह चतरा, टैल सिंह, जीत सिंह, प्रेम भूषण गुप्ता, हरनेक सिंह, गुरचैन सिंह, कुलदीप सिंह, गुरसेवक सिंह ते उन्होंने होर बहुत सारे साथी, आओ जी सारे की फरमाइश ते उन्हां दी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। परमिंदर
0: परमिंदर संधू दे इस गीत नाल।
1: जी

0: जी
1: जी गाना तो असी सुन रहे सी, पर साड़ी जिहड़ियां घड़ी दियां सुइयां उन्होंने सानू दस दिता कि असी पूरा गीत नहीं सुन सकते। पर कोई गल नहीं, प्रोग्राम हर रोज़ आंदा है वसदे वेड़े ते, रोज़ कोई ना कोई नवी फरमाइश, नवे गीत ते नवियां भैणां साड़ियां जिहड़ियां कोई ना कोई सुझाव लै के आंदियां।
0: बिल्कुल जी, और जानकारियां असी उन्हां नाल सांझी करदे हाँ। सो आज खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इस दे नाल ही अज दा वसदे वेड़े प्रोग्राम खत्म करन दी मैनूं गुरप्रीत नूं
1: ते मैनूं अलका नूं दिओ इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
4: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचार

विधायक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बजे सुनोगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते प्रोग्राम होए पेश कीता जाएगा सौगात। परिचय तहत ऐसा नज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने। कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: समेत दो मुलजमान नूं 8.378 किलोग्राम हीरोइन ते 2 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार करके सरहद पारों चल रहे नशा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये जानकारी पुलिस के डायरेक्टर जनरल DGP पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार मुलजम की पछाण अमृतसर के पिंड खासा के रहने वाले एक व्यक्ति वजह हुई है, जबकि दूजा मुलजम एक नाबालिग है। DGP ने दसिया कि मुढ़ली जांच मुताबिक उक्त मुलजम सरहद पार से तस्कर के इशारे से काम कर रहे सन और वख-वख थावां तो हीरोइन दी खेपां हासिल करके इन्हां नूं अगे सूबे भर में सप्लाई करते सन। DGP ने कहा कि इस मामले में अगले पिछले संबंधों का पता लाने लई बारीकी नाल जांच की जा रही है। भारत ते इंग्लैंड दरमियान 5 मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का 5वां ते आखिरी मैच आज साउथहैम्पटन दे यूटिलिटा बाउल विखे खेडिया जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होना है। इंग्लैंड पहला ही 3-0 की लीड नाल लड़ी अपने नाम कर चुकिया है। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। साडा xhandle@eirrn जलंधर राष्ट्रीय खबरां का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

फौज वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों, जय हिंद। पेश कर रही हूँ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का पहला गीत तुहाडे लिए लेके हाजिर हाँ फिजा फिल्म चो। इस गीत नू गाया ए आर रहमान ते साथियां ने। गीतकार ने शौकत अली और संगीतकार ए आर रहमान।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। साल 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स वजारती एलामिया 2026 को इख्तियार किया गया है। बावी तूफान के सबब जापान और ताइवान में परवाजों को मनसूख करना पड़ा और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पांचवें और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और आज रात फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से, जबकि अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने ताल्लुकात को तौसी देकर दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया और उन्होंने अशिया और खिदमात के शोबे में अपने सालाना दो तरफा ताल्लुकात को साल 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए की मालियत तक ले जाने के लिए 5 साल का वक्त मुकर्रर किया। ये फैसला ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद किया गया। मीटिंग में कई ठोस फैसले किए गए। इन कई फैसलों में से एक, अगले 4 साल में ताल्लुकात को तौसी देने का एक खाका, भारत बहरुल काहिल समंदरी तावुन में इजाफा करने का फ्रेमवर्क और भारतीय बहरिया नीज न्यूजीलैंड की दिफाई फौज के दरमियान एक दो तरफा लॉजिस्टिक्स मदद का मुआहिदा शामिल है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह किया, जिससे एक आज़ाद, खुले और खुशहाल खित्ते के तई उनके मुश्तरका अज़्म का इयादा होता है। उन्होंने खुद मुख्तारी की हिफाजत, इलाकाई सालिमियत और उसूलों पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुतवाजन, जामे और बाहम फायदेमंद भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती मुआहदे की तकमील और इस पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने इस मुआहदे को जल्द अज जल्द लागू किए जाने और इस पर मुअस्सर तौर पर अमल किए जाने को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रिश्तों के लिए न्यूजीलैंड में भारतीय बिरादरी का अहम रोल है। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं।
1: हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किसी फर्द की शख्सियत को बनाने में लाइब्रेरियों की अहमियत को उजागर करते हुए मुल्क की नौजवान नस्ल से कहा है कि वो लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करें। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और कौमी लीडर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात पेश की थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क को और उसके लोगों को समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है

0: जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रिवायती दिफाई सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजियों को मजबूत करके एक ताकतवर, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फोर्स बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें हो सकता है कि मस्नूई जहानत और दीकर उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से लड़ी जाएं, लेकिन बिलाखिर वो बहादुर सिपाहियों और बासलाहियत फौजी ताकत के साथ ही जीती जाएंगी। छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मशरकी बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IND महेंद्रगिरी को शामिल किया जाना भारत की बहरी ताकत और मुल्क में ही तैयार करने की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की समत एक संगे मील है।
2: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफ लाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजरा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिकारों से बात करते हुए जनाब गडकरी ने बताया कि शराकतदारों ने सड़क, रेल, फजाई और आबी ट्रांसपोर्ट को कार्बन के बगैर बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और मुतबादल बायो ईंधन और आलूदगी से पाक टेक्नोलॉजियों को अपनाने पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत, लचकदार और पायदार ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तावुन को मजबूत करने की खातिर ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजियां और इख्तिरात का तबादला किया जा रहा है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रांसपोर्ट वजरा ने भी इस मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात और बयानात पेश किए। रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को एक बड़ा तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का हब बनाने का ऐलान किया। हैदराबाद को बुलेट ट्रेन के साथ पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ जोड़ने की तजवीज रखी गई है। हैदराबाद में एक सनती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार रेल नेटवर्क सफर के वक्त को कम करेगा और जनूबी भारत के बड़े इक्तिसादी मरकजों के दरमियान कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तूफान बावी आज मशरकी बुहेराए चीन में शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके बायस जापान के जनूबी जजायर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि ताइवान और मशरकी चीन तूफान से निमटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 144 किलोमीटर फी घंटे की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल रफ्तार वाली हवाओं के साथ इस तूफान के बारे में पेशगोई की गई है कि ये चीन के सूबे जेजियांग में कल सुबह सवेरे खुश्की से टकराने से पहले ताइवान के शिमाल से गुजरेगा। हुकाम ने समंदर में तुखियानी और बुलंद लहरों की वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से जापान के ओकिनावा सूबे में 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं और स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत साउथैम्पटन के यूटिलिटा बोल में T20 बैनुल अक्वामी सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड 3-0 की बढ़तरी के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। फीफा आलमी कप में दीकर क्वार्टर फाइनल्स में आज रात मियामी गार्डन्स में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक बुलंद किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए करने का हदफ रखा गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में जंगी जहाज INS महेंद्रगिरी को शामिल किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, खुद मुख्तार और मुस्तकबिल के लिए तैयार दिफाई फौज बना रहा है।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
3: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड

0: में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए।

0: फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र

0: गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने उस्ताद बरकत सिद्धू। आओ सुनते हैं इन्हां दी आवाज़ च प्रोग्राम च सब तो पहला तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया।

रंगली धरती प्रोग्राम दे अखीर च आओ सुनदे आं उस्ताद बरकत सिद्धू दी आवाज़ च रब्बा मेरे हाल दा महरम तूं।

0: तक ले सानू इजाजत दियो। नमस्कार।
1: डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। हुण दुपहर के ठीक 3 बज रहे ने। पेश है हुण तक दियां मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री क्रिस टोफर लक्सन ने अज ऑकलैंड च वफद पदरी गलबात कीती। दोवां देशां ने पंज महत्वपूर्ण समझौतियां ते दस्तखत कीते।

गांव खैरे का, सिरसा तो इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनील लोट ते दर्शन लोट होना दा कोई भी मर्जी कहते गीत सुना दो। लो जी, इन्होंने सारे की पसंद के गीत सुनाते हैं थानू अमन नूरी की आवाज़।

0: पूरा सुनाना सी, लेकिन टाइम नूं ध्यान च रखते हुए प्रोग्राम नूं इत्थे समेटते हां। प्रोग्राम दियां बाकी चिट्ठियां कल नूं पढ़ांगे, कोई ना कोई आरजे तुहाडी ड्यूटी च आएगा, पेश करेगा आके चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। लो सुनो अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

0: कीते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम च स्वदेशी तौर ते विकसित स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी नू समुद्री फौज ते बोड़े च शामिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाइब्रेरियां दी महत्ता नू उजागर करदिया नौजवान पीढ़ी नू इन्हां नाल जुड़न दी अपील कीती। केंद्रीय सड़क आवाजाई अते शाहकार मंत्री नितिन गडकरी ने अज नागपुर विच ब्रिक्स देशां दे ट्रांसपोर्ट मंत्रियां दी तीजी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। अज विश्व जनसंख्या दिवस है। ए दिन हर साल 11 जुलाई नूं जनसंख्या वाधे नाल जुड़ियां चुनौतियां अते मौकियां प्रति जागरूकता पैदा करन लई मनाया जांदा है। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गैन सोध SIR तहत घर घर जाके गणना करन दी प्रक्रिया तेजी नाल चल रही है। 99.34% गणना फार्मां दी वंड पहला ही मुकम्मल की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे एक वफद ने सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगवाई हेठ अज पंजाब दे राजपाल श्री गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात कीती अते अबोहर नगर निगम मेयर चोण दौरान बेनेमिया अते सरकारी मशीनरी की दुरवरतों का इल्जाम लाते हुए एक मंग पत्र सौंपया। पंजाब नूं नशा मुक्त सूबा बनाउण लई चलाई जा रही विशेष मुहिम दौरान वड्डी सफलता हासिल करदिआं अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो मुलजमां नूं 8.378 किलोग्राम हैरोइन अते 2 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार करके सरहद पारों चल रहे नशा तस्करी दे नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। भारत इंग्लैंड दरमियान 5 मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का 5वां ते आखिरी मैच अज साउथैम्पटन विखे खेडिया जाएगा। ये सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार खेड संसार प्रोग्राम सुनने वालों नूं वीरेंद्र दा नमस्कार। पूरे हफ्ते दियां खेड सरगर्मियां बारे जानकारी लेके तुहाडी सेवा च फिर हाजिर हो गए हैं। अज दे खेड संसार प्रोग्राम च जिन्हां विषयां बारे गलबात होएगी उन्हां च भारतीय पैरा आर्चर्स ने चैक गणराज विच कामयाबी दी शानदार कहानी लिखी है। कामयाबी दी इस कहानी नूं पढ़ांगे। थाईलैंड विच साडे अंडर 15 भारतीय रैसलर्स ने एशियन चैंपियनशिप विच 21 तमगे जिते। इस प्रदर्शन ते भी चर्चा होएगी। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड विच प्रदर्शन निराशाजनक कर रही है, क्यों कर रही है इस बारे भी जानण दी कोशिश करांगे। इहदे नाल नाल फीफा वर्ल्ड कप ते विंबलडन टेनिस बारे भी तुहानू जानकारी दित्ती जाएगी। सुनदे रहो प्रोग्राम खेड संसार। पिछले हफ्ते थाईलैंड दे पटाया विच अंडर 15 एशियन रैसलिंग चैंपियनशिप हुई, जिस विच भारतीय नौजवान पहलवानां ने शानदार प्रदर्शन किया ते 21 मैडल्स हासिल किए, जिदे विच 8 गोल्ड 6 सिल्वर ते 7 ब्रोंज मैडल शामिल सन। इस इतिहासिक प्रदर्शन सदका भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम पूरे एशिया विच पहले नंबर ते रही। इस प्रदर्शन बारे आओ गलबात करते हैं राष्ट्रीय पद्धर दे कोच विक्रम शर्मा होरां दे नाल। विक्रम जी, साडे प्रोग्राम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप मुंडियां दी जे फ्री स्टाइल कुश्ती की गल करिए ना जी, तो प्रथमेश एस पाटिल ने 52 किलो च गोल्ड मैडल हासिल किया जी। इस पहलवान की कारगुजारी पिछे किदां दी रही है जी?
2: ये फर्स्ट टाइम ही गया एशिया चैंपियनशिप दे विच। महाराष्ट्र तो आया, अमोल बूचड़े दी अकैडमी तो आया महाराष्ट्र दे विच। भारत जिहड़े खुद महाराष्ट्र केसरी गए ने उन्हां दी रैसलिंग अकैडमी का पहलवान है, तो इन्हें गोल्ड मैडल जितया वा।

तप तप लोह लोह हाथ मरोरा, बावल हुई सो सौ लोरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बलदेव सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने, जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां दे हिरदे विच प्रभु प्रेम दी तांग है। अकाल पुरख उन्हां दे हिरदे दी वेदना ते दर्द नूं जान लैंदा है। राग गौंड विच साहिब श्री गुरु रामदास जी फरमाउंदे ने, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द का गायन कीता है भाई शमंदर पाल सिंह ते उन्हां दे रागी।

0: मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द का गायन किया सी भाई शमिंदर पाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: गौंड महला चौथा, हर दर्शन कौ मेरा मन बहुत तपतै, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। ए पाक पवित्र शब्द धन श्री गुरु रामदास जी दी रसना तो उचारण कीता होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 861 उपर राग गौंड विच सुवायमान है। इस पावन शब्द दी विचार इस प्रकार है। गुरु पंथ विच शब्द विचार करन लई एक सलीका है, जो गुरबाणी दे प्रेमी विद्वान गुरमुख प्यारियां ने दसिया है कि जदों तक शब्द दा मुख भाव समझ विच ना आवे, उतना चिर शब्द नूं विचारना जानना मुश्किल है। धन गुरु रामदास जी इस शब्द दा मरकजी भाव रहाओ दे पद विच उचारण करदे हन, इसलिए इस पावन पवित्र शब्द दी विचार रहाओ दे बंद तो ही आरंभ करिए। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, परमात्मा दा प्यार मेरे मन विच तीर दी तरह लगा होया है। हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर, उस प्रेम दे तीर दे कारण पैदा होई मेरे मन दे अंदर दी वेदना, भाव पीड़ा नूं मेरा हरी मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर जानदा है, क्योंकि इस पीड़ा दा देन हार भी ओ परम पिता परमात्मा आप ही है। दरअसल जिहड़ा रब दा प्यारा प्रभु जी दी सिफतो सलाह प्रेम विच भिज के करदा है, ये प्रेम दा अनियाला तीर उसे दे ही मन नूं हिरदे नूं

0: प्यार मैनू कोई प्रीतम दे प्रभु दे प्यार दी गल सुनावे। कोई ऐसा प्यारा गुरमुख प्यारा प्रभु जी दी कोई गल सुनावे। मैनू कोई मनुख उस दी सिफत सलाह सुनावे तां उस दियां सिफतां सुन के इउं प्रतीत होंदा कि ओही मनुख मेरा असल विच भरा है, मेरा वीर है। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। सखिए मेरे सतगुर दी मत शांति देण वाली है, गुरु जी दी मत धीरज ते सहज बख्शदी है। मेरे सतगुरु जी दी मत मनुखी जीवन अंदर कोमलता पैदा करन वाली है। ऐसे सतगुरु दी मत लैके हे सखी मैनू भी मिलया कर, ते मैनू मेरे प्यारे प्रीतम दी सिफत सलाह सुनाया कर। शब्द दे अखीर विच धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह प्रभु जी दे चरणा विच इल्तजा भाव बेनती करते हैं कि हे प्रभु जी, अपने दास नानक दी दर्शना दी तांग पूरी करो। हे हरि प्रभु जी, आप जी दे दर्शन करन नाल मेरे हिरदे नूं ठंड पै जांदी है, इसे लई अपने दर्शन दीदार बख्श के मेरा तन ते मन ठार दियो। इस प्रथाए गुरुवाक है, जन नानक की हर आस पूजावो, हर दर्शन शांत शरीर।
1: मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जसबीर सिंह। सच्ची प्रीत रखण वाले गुरमुख उस सच्चे दा ओट आसरा तकदे ने, उन्हां दे भाणे बाकी दियां सियाणपां व्यर्थ हन, क्योंकि सर्ब रक्षक अते सबनी थाई राखा अकाल पुरख ही है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग बिलावल विच उचारे शब्द विच जीवन सेध दिंदे हन ते परमेश्वर ते पूरन भरोसा प्रगटाउंदे हन। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियाणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। इस शब्द का गायन कीता है भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

रात 8 बजे होएगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। राती 8:15 बजे सुनावांगे प्रोग्राम सुलसा दी ताजी दे तहत। अज कलाकार मकबूल बाली दी आवाज़ दे विच तुसी गज़लां सुनोगे। संगत कलाकार होंगे तबले ते सुजीत जी, सारंगी ते सुखविंदर सिंह, कीबोर्ड ते जीवन ते बांसुरी ते गुरदीप सिंह। राती 8:45 बजे ते समाचार संध्या 9 बजे, न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम, 9:30 बजे संस्कृति भारती, 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस सारे प्रोग्राम तुसी सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। ऐसी अज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा वेरवा हुण सुनदे हां। एक समूह गान

0: प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दस लाख दी लॉटरी मेरी, वाह!
4: फसी, फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
5: RBI कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: हेलो,
8: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
9: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
10: आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र दे हुण सुनदे आ समूह गान, देश गान, ये वतन चांद और सितारों का।

0: हाँ जी शिंगारा सिंह जी बच्चे वालों, देखो अज बढ़ रही आबादी चिंता का विषय आप सारे जानने हैं,
1: बिल्कुल जी।
0: तो साढ़े ते असर है कई पक्षों पर,
1: हाँ सही गल है
0: चंगे भी होंगे माड़े भी होंगे है,
1: जी
0: पर हद तो ज़्यादा जिंदा आप कहने कि बहुत ज़्यादा आबादी का बढ़ना
1: जी,
0: ये साढ़े लिए कई पक्षों के उत्ते कितने ना कितने साढ़े लिए नुकसानदेह है।
1: नुकसान बिल्कुल है जी,
0: इस विषय को लेकर सरदूल सिंह होर आपको जानकारियां साझिया की तो आप साझिया करते हैं।
1: बिल्कुल जी।
2: भले वेलिया विच लोग कहा करते सी कि जिस घर विच जिन्ने वध जी होणगे उन्नी वध कमाई होवेगी, ये गल सच भी सी क्योंकि आबादी घट होण करके साधन वध सी ते साधना की वरतों करन लई अते वध तो वध कमाई करन लई ऊर्जा दे साधना की लोड़ सी ते मनुखी ऊर्जा इस कार्य लई सब तो वध कारगर सी। मनुख ने कुदरती साधना नूं अपने हितां लई ढाल के अपनी जिंदगी नूं सुखाली करन विच अहम भूमिका निभाई।

0: 前पूरी कथा कहानी दस। हुण मैनू अखां मीच के अंदरला टीवी छोड़ दे। फिर मई ताया की बीती ओदू गां आया चरना हथ के निकल गया।
1: ला सुन फिर।
2: कमलिया ऐ करना लोग ऐ नहीं सोचणगे भी बड्डी च कोई काण मीण है जी को छोटी ली फटक रिश्ता मिल गया। वे बड्डी कुवारी बैठी है, तू ही सोच जे तेरे बाई तो पहला मैं तेरे नाल जोड़ी बना लेंदी तो वो छड़ा ना रह जांदा।
1: ओ बड़ी खबर है, कदों तक बैठी रहू।
2: वे ता ही तो कहनी हाँ अड़ी छड़ बाबा जी तो भुल बख्शा लै नहीं मैं मर जा। लै दस बे मेरा लाड लिया देवरा बे जे तेरी मां मेरी सस बैठी हुंदी तो वो तरले पा लेंदी शहीदां दे।
1: तू बच रहा, मेरे तो तू ना मेरे तो कोई टंग बातड़ वाली।
2: लै मन दे हुण किसे दी है, उतले मनो ही सही बेमन नाली सही करके तो देख जे ना चमत्कार होया तां कहीं सारी उम्र दासी बन के रहूं जे बाबा ने ना तेरा मसला हल किया तो मैनू नाथों की ना कहना।
1: ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੀਚੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਐ।
2: ਲੋ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਤੇਰਾ ਹੋਊ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ।

0: बे रोटी लाती, परोस भी दित्ती, चल मुंह च भी पा दूं, पर जे तेरा कुछ लगदा मुंह भी ना हिलाऊ तां मेरी चाट दस के उन्हूं मेमना बना दूं।
1: फिर चल ऐ कर, महीने 20 दिन लई कोई बहाना करके दीपा नू लिया।
0: हाँ
1: देखी देखी फिर किवें चौंकियां भरदा वड्डा कामरेट।
0: बेटा क्या रे टकिया रे, सब जान दिया मैं तेरिया सियासतां, नाले चरना कानू समझदा तेरिया कितां नू, तू टलना नहीं बैपतां तो एवें वड्ड के मर जाओगे वड्ड के।
1: कदे तां अकल तों कम लै लिया कर।
0: ना अकल गई तेल लैण, तेरा की है, कही देगा ही ही करके, जे साली ना चौड़ कर ली बिंद ओरा दस की लून टलक गया बे मेरे हथों भी जाऊ चरना।
1: मैनू लगदा है ओनू लौंदी लौंदी तू ए लग गई ओदी चाट ते।
0: ना तैनू की तकलीफ है आप दे मंजे थले सोटा फेर पहला।
1: ओ हस लै मैं तां जान दे। चल सौ जा, पर एक बारी होर ला जे गेट च आ जे बाबे दे, नहीं फिर आप दे जोगा तां करना ही पऊ तैनू हर हाल।
0: ले मैं नहीं निकल दिंदी आप दे गेट चो, तेरे बाबे दा मैं ठेका नहीं लिया, जे आपे सूत हो गया तां मैनू हर्ज भी है नहीं, पर मैं तेरी हठ पिछे आप दे 8 किले नहीं जान दिंदी, समझ रहा।
1: अच्छा अच्छा।

0: प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: इस मौके ते बोलदिआं न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोहां देशां विचकार रणनीतिक अते आर्थिक भाईवाली लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड दे बरामदकारां नूं 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा ते न्यूजीलैंड विच भारतीय कारोबारियों लई नवें मौके भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ना सिर्फ एक व्यापारक भाईवाल है बल्कि न्यूजीलैंड लई एक भरोसेमंद सहयोगी भी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत की वधदी विश्वव्यापी साख प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय भाईचारे के योगदान की शलाघा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का अपना 2 दिन इतिहासक दौरा मुकम्मल करने तो बाद भारत लई रवाना हो गए ने। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 4 दहाकों तो वध समय में न्यूजीलैंड का पहला दौरा सी, जिस नाल दुवल्ले संबंधों को काफ़ी मजबूती मिली। दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नाल गलबात की। दोवां आगुआं ने रख्या सैर सपाटा, खेडां, आफत प्रबंधन, डेयरी ते पशु पालन समेत वख वख खेत्रां विच 5 समझौतियां ते दस्तखत किए। प्रधानमंत्री माइक्रोफूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज स्कीम PMFME ने देश भर में 2 लाख तो वध सूखम खुराक प्रोसैसिंग उद्यमों कर्जे मंजूर करने का मील पत्थर पार कर लिया है। इस स्कीम अधीन 20,300 करोड़ रुपए तो वध निवेश होया, जिस नाल रोजगार के लगभग 11 लाख सीधे ते असिधे मौके पैदा हुए ने। अज नवी दिल्ली में एक विशेष समागम में संबोधन करदे केंद्रीय खुराक प्रोसैसिंग सनअत मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह प्राप्ति ना सिर्फ खुशी का मौका है सगों भारत की फूड प्रोसैसिंग विकास यात्रा के अगले पड़ा लिए एक मजबूत नींव भी है। यह प्राप्ति दर्शाती है कि योजना का दृष्टिकोण देश भर में ठोस नतीजों में बदल रहा है। श्री पासवान ने इस गल्ल ते भी जोर दिता कि सारे लाभपात्रियों लगभग 44% महिला उद्यमियों की भागीदारी महिला अगवाई वाले विकास की असल भावना दर्शाती है। इस मौके पर श्री पासवान ने योजना तहत प्रदान की गई बीज पूंजी सहायता का भी जिक्र किया। इस राही 4,18,000 तो वध स्वै सहायता समूह मैंबर की मदद की गई है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। वियतनाम के फू कोक टापू नेड़े अज भारतीय सैलानियों ले जा रही एक किश्ती पलट गई। स्थानक खबर अनुसार 15 लोगों के मारे जाने का खदशा, जदों कि 21 नूं बचा लिया गया है। 32 भारतीय सैलानी ते चालक दल के 4 मैंबरों नूं लैके जा रही किश्ती होनमी रूत नगोई टापू तो लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिस तों बाद बचाव कार्य शुरू किए गए। हनोई स्थित भारतीय दूतघर ने दस्सिया है कि भाल ते बचाव कार्य जारी ने, हादसे के कारणों का पता लाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक टापू नेड़े भारतीय नागरिकों नाल हुए दुखदाई किश्ती हादसे ते सोग प्रगट किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने जख्मियों के छेती ते पूरी तरह ठीक होने की कामना की। उन्होंने इस दुखांत तो प्रभावित सारे लोगों लई ताकत ते हिम्मत प्रदान करन दी भी अपील कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों गुआ वालों के परिवारों प्रति संवेदना प्रगट की, जख्मी बचे लोगों के जल्दी ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि वियतनाम में भारतीय दूतघर और कौंसलेट हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं, वियतनामी अधिकारियों निरंतर संपर्क में ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज विशाखापट्टनम स्वदेशी तौर पर विकसित स्टैल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी समुद्री फौज के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। इस मौके पर बोलदिया श्री सिंह ने कहा कि भारत रवायती रक्षा समर्थावां अते उन्नत तकनोलॉजियां दोवां नूं मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर अते भविख लई तैयार रक्षा बल बना रहा है। उन्होंने अगे कहा कि भविख दीआं जंगां विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस अते होर उभर रहीआं तकनोलॉजियां की वरतों शामिल हो सकती है, पर उन्हां नूं हथियारबंद फौजां दे दृढ़ इरादे अते हिम्मत नाल ही जितया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत पहलकदमी की सफलता बारे श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% तो वध स्वदेशी हिस्से पुर्जियां की वरतों की गई है। उन्होंने कहा कि जंगी जहाज ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिजाइलों, उन्नत राडार, हवाई रक्षा ते इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां ते आधुनिक स्वदेशी हथियारों नाल लैस है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी समुद्र तो हवा ते धरती तो समुद्र तक मार करने के समर्थ है। उन्होंने अगे कहा कि इस नाल हिंद महासागर में भारत की समुद्री शक्ति होर वधेगी।
2: समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई

0: चेंज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी एक लाइफ लाइन। आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है।
1: ज्योति सुरेखा वैनम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तानी पारथी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने अज स्पेन के मैड्रिड में तीरअंदाजी विश्व कप स्टेज फोर में चांदी का तमगा जितया है। फाइनल में भारतीय टीम कोलंबिया तो 228-232 हार गई। इस दौरान प्रतिका प्रदीप ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करद विश्व की 11वें नंबर की खिडारन तुर्की की हजल बरून 145-42 हरा के कांसी का तमगा जितया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अज नॉर्वे का इंग्लैंड नाल मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार तड़के 2:30 शुरू होगा। चौथे क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला कल स्विट्जरलैंड नाल होगा। स्पेन ते फ्रांस पहला ही सैमीफाइनल में पहुंच चुके ने। अज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई में मनाया जाने वाला यह दिन जनसंख्या के वाधे नाल जुड़िया चुनौतियां ते मौकियां प्रति जागरूकता पैदा करने लिए मनाया जाता है। इस दा उद्देश जनसंख्या नाल संबंधित मुद्दों ते ध्यान केंद्रित करना अते निरंतर विकास वाले यत्नां नूं उत्साहित करना है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संदेश विच कहा है कि स्वै इच्छित परिवार नियोजन, जागरूक फैसले अते सेहतमंद परिवार समावेशी अते निरंतर विकास की मजबूत नींह ने। अंत विच चोणवीं खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय भाईचारा दोहां देशों विचकार मजबूत हो रहे संबंधों का एक महत्वपूर्ण थम है। श्री मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन इतिहासक दौरा मुकम्मल करने तो बाद भारत लई रवाना हो गए हैं। देश के 2 लाख तो वध सूखम खुराक प्रोसैसिंग उद्यमों कर्जे मंजूर करने का मील पत्थर पार कर लिया है। वियतनाम में भारतीय सैलानियों ले जा रही एक किश्ती के पलटन कारण 15 लोगों के मारे जाने का खदशा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज विशाखापट्टनम में स्वदेशी तौर पर विकसित स्टैल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी समुद्री फौज में शामिल किया। इस ही राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला बुलेटिन भारत के सवेरे 8:30 पर होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 7:40 हो रहे ने। हुण विशे प्रोग्राम साहित्य सुधा जिहदे विच अज दा विषय है संस्कृत साहित्य विच वणां दा महत्व ते वाताकार ने डॉक्टर राजेंद्र शर्मा।
3: भारतीय संस्कृति दे मूल विच मनुख अते प्रकृति दे विच इक नितांत आत्मीयता दा भाव सी। वह भाव सुभाविक तौर पर प्रकृति के शोषण या दोन की गल नहीं परंतु उहदे इष्ट अते कल्याण की ही गल सोचण नूं प्रेरित करता सी। मनुख नूं गहन जंगलों या वणां का सौंदर्य हमेशा तो ही इन्ना आकर्षित करता रहा कि वह जंगलों या वणां विच स्थित भयानक ते भयानक प्राणियों की भी परवाह न करते हुए उहदे विच प्रवेश हो के अपने साहसिक मन की भुख अते शांति करता रहा। वण अत्यंत प्राचीन वैदिक शब्द है जिहदा प्रयोग ऋग्वेद जिहड़ा कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है उहदे विच कई थावां ते होया है। वनम वनोतेह इस अर्थ नूं निरुक्तकार ने भी किया है। वणां च जीव जंतुआं हवावां अते खुशबुआं दे शोर दी ध्वनि भरी रहिंदी है। वणां दी सघनता ते गंभीरता विच रात दा अंधकार ते दुपहर दा इकल्लापन हमेशा रहिंदा है परंतु तरह तरह दे जीव जंतुआं दी बोलियां नाल ओह गंभीरता भंग हो जांदी है। वण शब्द पर्याय अरण्य दा भी वर्णन विच होया है। अरण्यम अपारणम ग्रामाद रमणम भवतीति वाह भाव अरण्य तो अर्थ उस ग्राम दा है जिहड़ा दूर हो गया होवे ते जो ज़्यादा सुखकारी ना होवे। उस निर्जन देश विच पशु पक्षियों का वास तो हुंदा है किंतु मनुख का वास ना होण के वह डरावना भी लगता है। ऋग्वेद इस मंत्र अनुसार मनुख ते वणां का किन्ना सुंदर वर्णन होया है। उत गाव इवादन त्युत बेशमेव दृश्यते हे उतो अरण्यानी सायम शक्ति रिव सरजती भाव वणां दे प्रदेश विच गां आदि अरण्य पशु का खांदे हन। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਮ ਤਰੂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਣਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨੋ ਅਰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है. That means they are interchangeably used. ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है. यहाँ एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना. अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है. सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है. सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं. टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द. टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि. कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग. अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है. मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है. खाली दिमाग शैतान का घर है. व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी. दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक

0: दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी, मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वह अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time.
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे

नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से DRM 864 किलोहर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। रात दी 8 बज रहे ने। हुण पेश है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और इस प्रोग्राम दी पहली पेशकश कुमार सानू ते अलका याग्निक दियां आवाज़ां दे विच गाया गीत तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता है।

0: अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में

0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789154915237414 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान

0: श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का 4th संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4th चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के

0: मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए आप

साहित्यिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, यह कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात

श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 100

0: पाठगढ़ जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
1: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का बाड़ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो ये पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीय तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
0: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
2: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं।

0: इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
1: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
2: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
4: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी, हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
5: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती।
0: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक

धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोग

बुद्ध कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पांडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटन अटारी ये तो हमारे ध्रुव वह के जन्म है मोर। उस दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे, भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रहे हूँ। माँ गावे है आर

0: राजा जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगा हुए। तो सुने पर आते कि वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। अब कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो।

0: सकत रहे हैं, उमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हैं, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते, तो बोले भूरियारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लगते, लेकिन मल्ला सिखा के दे दो।
1: तप करत मैं धुरला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्यों टल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शीला गदा पकड़ के रिंग था तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एति तेती बहका सक

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muthaiya Bhagavatar in Nataragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नो विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagraga.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो। हाँ जी सरनमी उस्ताद
0: हाँ
1: जी,
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो बोल रहे हैं जी।
0: जनकराज जी, बहुत बहुत स्वागत है पूरे ढोल ढमक्के के नाल तुहाडा, असीं स्वागत करते हैं।
1: थैंक
0: वो ठीक ठाक हो जी?
1: यू जी। हाँ सरनमी आप जी,
0: क्या बात है जी, धन्यवाद जी। दसो किहड़ा गीत सुनाइए जी फिर।
1: सर जी मेरे जहाँ का गाँव है आपने जी, और लीजिए जो लेना मेरा नाम।
0: क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: थैंक

0: क्या बात है, क्या बात है। वाकई भी नूरजहां दी आवाज़ दे विच भी एक खास ही कशिश। ते साडे विड़े साडे अगले कॉलर दोस्त भी पहुंच चुके ने, आओ फिर गलबात करिए। हेलो,
1: हाँ जी कमल जी, प्यार
0: हाँ जी,
1: भरी सत श्री अकाल है जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: मैं बंसी लाल, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अंबाला जी।
0: बंसी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है तुहाडा। हाँ जी,
1: हाँ जी, वो
0: ते दसो जी फिर केड़ा गीत सुनाइए। केड़ा?
1: गीत लाओ जी, सरदूल सिकंदर का, एक चरखा
0: गली दे
1: कली
0: विच
1: देवी पा
0: डालिया,
1: लिया,
0: दूजा सुरमा अखां दे विच पा लिया,
1: अखा दे विच पा लिया, एक
0: एक
1: तेरी अख कासनी।
0: आहा, क्या बात है। ते लो जी फिर सुनते हैं गीत। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू जी।
0: सो दोस्तों, तुसी भी साडे वीले सानू कॉल कर सकते हो, मिठे मिठे ते प्यारे प्यारे गीत सुनने के लिए। साडा नंबर है 01 8 1 23 42 171।

0: हेलो,
1: सत
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सर, मैं संतोष कुमार यादव, मैं केरल से बोल रहा हूँ सर। मैं
0: हाँ जी, हाँ जी, संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। पूरे ढोल ढमक्के दे नाल असी स्वागत करदे हां।
1: सर, मैं ये कि मैं बोल रहा हूँ सर, खावत हक्का रोटी खाई की भूख पालते करिए सर। और आपसे ये मैं बोल रहा भाई, जहाँ तक टोल जाता है, मैं जलंधर आ रहा हूँ,

0: हेलो,
1: सर जी,
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: गर्मी में राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ से।
0: राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है।
1: धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
0: राजू जी, दसो फिर केड़ा गीत सुना दीए?
1: मिस पूजा का गीत सुन।
0: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मिस पूजा का गीत।

0: जी दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात आकाशवाणी पंजाब ते अपने दोस्त कमल दे नाल। ते मेरा ते तुहाडा साथ पूरे 1 बजे तक इदां बनिया रहेगा। ते तुसी साडे वेले कॉल कर सकते हो, सानू साडा नंबर है 01-2143-4171। ते किसी भी फरमाइशी, पंजाबी फरमाइशी गीत की तुसी फरमाइश कर सकते हो, जरूर असी उन्हें पूरी करने की कोशिश करांगे। ते साडे वेले साडे अगले कॉलर दोस्त पहुँच चुके ने, और राबता कायम करिए उन्होंने नाल। हेलो,
1: नमस्कार शर्मा जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीराम मलोड तो।
0: गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। वो ठीक,
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद जी तुहाडा भी। दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: नछत्र गल से जसपिंदर नरूला का सुनावे जी।
0: जरूर जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो, सत
0: हाँ
1: श्री
0: जी
1: अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं।
1: मनजीत कौर बोल रही है, दिल्ली तो जी।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमक्के के नाल स्वागत है। हाँ जी मनजीत जी, कहड़ा गीत सुनाइए तुहानू?
1: गीत सुना दो सुरेंद्र कौर दा जी।
0: कहड़ा जी?
1: मैं अखियां च किवें सुरमा पावां,
0: कि अखियां च
1: अखियां च
0: तू
1: तू
0: वसदा।
1: बसदा।
0: ठीक है जी, धन्यवाद
1: हाँ
0: जी कॉल
1: जी
0: करने के लिए।

0: हेलो,
1: हेलो कमल भाई, नमस्कार। कमल
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं।
1: भाई बिट्टू बोल रहे हैं, दूरदर्शन में बैठता है जी।
0: सो बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है पूरे ढोल ढमक्के दे नाल। स्वागत है।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी बिट्टू जी,
1: मैं
0: दसो कड़ा गीत सुनाइए।
1: अभी कमल भाई सारे फिल्म हैगी है जी, भंगड़ा
0: हाँ जी,
1: थोड़ा गाना है जी। अंबिया के बूटिया से लग गया पीर जी, चंद मेरा दिल, मैं तो वो मैं
0: क्या
1: भाई
0: बात है, क्या बात है। चलो जी, जरूर सुनते हैं आप गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार कमल शर्मा
0: हाँ
1: जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? केड़ी जगह तो बोल रहे हैं? रसगनिया
1: श्री गुरु रविदास नगर नोट तो किस जगह लग रही है जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है पूरे ढोल ढमक्के दे नाल तुहाडा स्वागत है।
1: कमल शर्मा जी, थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू साड़ी गल रिसीव करने वास्ते जी।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। दसो जी, फिर केड़ा गीत सुनाइए?
1: गीत अज फिर मोहम्मद सिद्धी रंजीत कौर का सुना दो, मूंगिया बेच गया कोई गदर। हाँ जी,
0: क्या बात है। नहीं वो
1: वैसे मलोट के वास्ता नहीं हो रही, मैं मूंगिया पहला पजा रहा हूँ जी।
0: चलो ठीक है, वो कहते ना भी किसी चीज मैनिफेस्ट करो, कल्पना करो, आस
1: हाँ
0: करो, तो फिर वो आ ही जाता।
1: हाँ, वो चीज फिर मिल जाती है अपन फिर।
0: हाँ, तो फिर मैं भी याद करा दिया भी बाहर जे कोई कपड़े कुपड़े सुखने पाए तो ला के पहला थले ले आओ, तो
1: हाँ
0: गाना
1: ठीक
0: चलते चलते मीह पै ही
1: है
0: जाना।
1: जी,
0: तो लो जी, धन्यवाद जी।
1: शुक्रिया, थैंक यू बाबा।

0: हेलो।
1: हेलो। कुछ
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं।
1: नहीं है, मुझे तो नहीं खान का।
0: मंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा स्वागत करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत वधिया जी, तुसी सुनाओ जी, ठीक हो?
1: चले
0: दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए जी।
1: सुना दो गीत।
0: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: हाँ जी, ओके।
0: ओके।

0: हेलो,
1: कमल जी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हो तो कि जगह तो बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा तो।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके के नाल तुहाडा स्वागत है।
1: धन्यवाद शुक्रिया जी।
0: हाँ जी, दसो जी, केड़ा गीत सुनाइए फिर?
1: सुखविंदर सुक्खी वाला दे
0: हाँ जी, केड़ा?
1: दिल ते शीशा।
0: लो जी, आ गया तुहाडी रेडियो सेट ते। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: जी श्यामलाल
0: जय हिंद जी। कौन बोल रहे हैं? ते केड़ी जगह तू?
1: बोलता जी, रतिया जिला फतेहाबाद।
0: श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है। हाँ जी श्यामलाल जी, केड़ा गीत सुनाइए तुहानू?
1: अजीतर मंजिला सुना लो जी, सरकार।
0: क्या बात है जी, जरूर जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

राजा रसालू की गाथा का आरंभ बिंदु रसालू का जन्म नहीं बल्कि सलवान नाल संबंधित प्रसंग ने। सलवान की राज व्यवस्था लोक मानस से मेच नहीं सी आ सकती। उसकी पहली औलाद पूरन की महल विच होंद सलवान की कारज विधि कई गुंजल पैदा कर सकती सी। पूरन नू जमदया भोरे पा के राजे सलवान ने समस्या का वक्ती हल तो लभ लिया पर पूरन हल नहीं। पूरन की पूरनता सलवान शाही तो नाबरी बिना संभव नहीं। सलवान शाही तो नाबरी पहला पूरन के भोरे चो निकलण की अवस्था है। फिर एहो नाबरी सलवान शाही का शिकार हुई लूणा की प्रकृतिक भुख नालों सांस्कृतिक रिश्ते पहल देन कारण है। सलवान की राजगद्दी लई वारस की लोड़ एक दुबधा जन्म दिंदी है। पूरन पूरनता तदों प्राप्त करता है जदों राजगद्दी लई वारस की बख्शिश रसालू के रूप च देण दे समर्थ बनता है। राजे रसालू का काल निश्चित करना आसान नहीं। उस दी मिथ उसनू अजे अलौकिक काल नाल जोड़ती है जदों मनुख का पशु पंछियों नाल समाजिक भाईचारा सी। एक पासे मनुख रूप परिवर्तन के समर्थ सी ते दूजे पासे जादू टोने नाल एक अलौकिक संसार रच लैंदा सी। इस हिसाब राजा रसालू कलयुग का लोकनायक है। गथावां विचले सूखम प्रतीकां तों रसालू वेले पंजाब उत्ते विदेशी कबीलियां दा दबदबा सी। ना मर्दां दी पति सुरक्षा सी ते ना तीवियां दा सत, ना धन सुरक्षित सी ना अन्न। यह समा सदी ईस्वी के मुढ़ले दौर का है जदों पंजाब च विदेशी ताड़वी हरल हरल करते फिरते सन। उन्हीं दिन ही सलवान ने मुल्तान नेड़े कहरोड़ विखे ताड़वियां नू हरा के साका संमत दा मुढ़ बनिया सी। रसालू इसे सलवान का पुत्र मनिया गया। गथावां इस का प्रमाण ने।

गई, होय होय होय होय मंगनी हो गई, हाय हाय हाय हाय मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए।

मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। भगत नामदेव जी फरमाउंदे ने कि मेरा सहारा

अरा हे अकाल पुरख, तेरा नाम है। जिवें दृष्टिहीन व्यक्ति लई डंगोरी आसरा हुंदी है, इसे तरह मेरी जिंद दा आसरा आप जी दा परापूरबला नाम है। ताही तां श्री गुरु अमरदास जी पैरों राग विच उचारित शब्द विच नाम दी प्राप्ति गुरु राही दसते हुए नाम नू इच्छा पूरक दसते ने। मन मेरे राम नाम आधार, गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पुजावण हार। इस शब्द का गायन कीता है बीबी अजीत कौर होरा ने।

0: मन मेरे राम नाम आधार, गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावण हार। इस शब्द का गायन कीता सी बीबी अजीत कौर होरा ने। नाम तो बिना होर सब आसरे व्यर्थ हन। इस करके चौथे पातशाह नाम जपण वालियां नूं वडभागी बयान करदे होए मनुखता नूं नाम जपण दी हिदायत करदे ने। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां पासों वार्ता। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वड्डा भाग गुरमुख हर लैना। सुनदे हां डॉक्टर जसबीर सिंह साबर होरां पासों वार्ता। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वड्डा भाग गुरमुख हर लैना।
1: विचार अधीन पंक्ति गुरु की नगरी अनूप रामदासपुर के सिरजक श्री गुरु रामदास साहब जी के मुखों उच्चारण की हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 366 उपर अंकित की प्राप्त होंगी है। ये पंक्ति गंभीरता नाल ठीक प्रसंग च विचारन ते बहुत ही वडमुले विज्ञानक तत्थ साढ़े सन्मुख प्रगट होंदे हन। श्री गुरु रामदास जी की बाणी की वड्डी वड्याई ते अचरज शोभा इस तत्थ तो प्रगट होंदी है कि वह मानव जीवन के हर पक्ष नूं अध्यात्मक दृष्टि के नाल नाल समाजिक पक्षों भी एक सार वेखण परखण उपरंत अपनी विचारधारा नूं मानव जीवन नूं सवारन शिंगारन अते सच्चे मार्ग का पांधी बनन लई उभारते हैं। इहो कारण है कि वह गुरु नानक पातशाह के सिरजे प्रमुख सिद्धांतों विचों किरत करो नाम जपो अते वंड छको नूं एक दूजे के पूरक मन के समरूपता दिंदियां प्रचार दे ते प्रसार दे हन। गुरु साहब वल्लों गुरु की नगरी अनूप रामदास पर नूं वसाउण लई 52 मार किताकारां नूं लिया के वसाउणा अते उन्हां किताकारां दी अपने कारोबार लई हर लोड़ींदी मदद करदियां उन्हां दी मानसिकता नूं नाम सिमरन नाल जोड़ना अते वंड छकण दी भावना पैदा करना इस तत्थ दा

हर पगतन को नाम आधार, संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। इस शब्द गायन कीता सी भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी भजन। असीं आकाशवाणी पंजाब तो बोल रहे हाँ। इस वेले तड़के दे 4 बज चुके ने, ते आओ हुण तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हाँ, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो सेज सदा सह शवान संतोख सराय चो सदा शीर्ष ना सोह गुरु शब्द समाचर्य नाम टेक संगात बोह अजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर।

सतगुरु नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जीओ, तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्ट तारे, शब्द रद विचार काम क्रोध खोवे जीओ, जिया न सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवे जीओ, जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल तो वह जियो सत।

तहत दान बबेक दान विसाहु दान प्रुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल